0: कोट परदेस परमा है।
1: जित जित लाभ तित तित लगना, नानक करते की जाना करता रखना।
0: कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी।
1: कई कोट पंखी सर्प उपाय, कई कोट पाथर बिल्प निप जाए।
0: कई कोट पवन पानी बैसंतर, कई कोट देश भू मंडल।
1: कई कोट सस्य सून क्षेत्र, कई कोट देव दान इंद्र क्षेत्र।
0: सगल समग्री अपने सुतारे, नानक जिस जिस पावे।

0: क्रोध बिकराल, कबहू सर्ब की हो तरवाल।
1: कबू होए बहे बड राजा, कबू पे थारी नीच का साजा।
0: कबहू अप कीर्त में आवै, कबहू भला भला कहावै।
1: ज्यों प्रभ राखै ते भी रहै, गुर प्रसाद नानक सच कहै।
0: कबू होए पंडित करे बखियान, कबहू मोन धारी लावै ध्यान।
1: कबू तट तीर्थ स्नान, कबू सिद्ध साधक मुख ज्ञान।
0: कबहू कीट हस्त पतंग होए जिया, अनक जोन भरमै।

0: चौथे पद में सोजन गत पाए।
1: रूप सत जाका सत स्थान, पुरख सत केवल प्रधान।
0: तूत सत सत जाकी बाणी, सत पुरख सब माहे समाणी।
1: सत कर्म जाकी रचना सत, मूल सत सत उत्पत।
0: निर्मल निर्मली, जिसे बुझाए तिसे सब पली।
1: सत नाम प्रभु का सुखदाई, विश्वास सत नानक गुरु ते पाई।
0: सत वचन साधु उपदेश, सते जन जाके हृदय प्रवेश।
1: सत नित पूजा जे कोई, नाम जपत ताकी गत होए।
0: आप सत किया सब सत, आपे जाने अपनी मित गत।
1: जिसकी सिर सो करना हार, अवर ना बूझ करत विचार।
0: करते की मित न जाने किया, नानक ज्योतिष पावे सो वर्तिया।
1: विस्मन विस्म भय विस्माद, जिन बूझिया तिस आया स्वाद।
0: रंग राच जन रह, गुर के सब गुर के बचन पदार्थ।

0: राष्ट्रपति
1: संत संघ अंतर प्रभु डीठा नाम प्रभु का लागा मीठा
0: सगल समग्री एक से काट वाहे अनकरंग नाना दृष्टाहे
1: नौनिध अमृत प्रभु का नाम देही मैं इसका विश्राम
0: सुन समाद अनहत तै नाद कह न जाई चर्ज विस्माद
1: इन देखे जिस आप दिखाए नानक जन सोझी पाए
0: सो अंतर सो बाहर अनंत घट घट व्याप रहया भगवंत
1: करन माहे आकाश प्याल सर्व लोक पूर्ण पित पाल
0: बन तन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा कर्म
1: कौन पानी बह संतर माहे चार कुंट तै दिसे समाहे
0: इत्ते भिन्न नहीं को ठाओ गुर प्रसाद नान सुख पाओ
1: वेद प्राण सिमरत मैं देख ससियर सूर निखत्तर मैं एक
0: वाणी प्रभ की सब को बोला आप डोल न कबहू डोला
1: सर्व कलाकार खेला खेल मोल न पाइया गुण अमोल
0: सर्व ज्योत मैं जा की ज्योत धार रहो स्वामी ओत पोत
1: गुर प्रसाद परम का नास नानक तिन मैं इहो विसास
0: संत जना का पेखन सब ब्रह्म संत जना का हृदय सब धर्म
1: संत जिना सुने सुब बचन सर्व व्यापी राम संग रचन
0: जिन जाता तिस की ये रहत सत बचन साधु सब कहत
1: जो जो होए सोई सुख माना करन करावन हार पब जाना
0: अंतर बसी बार पियो ही नानक दर्शन दे सब मोही
1: आप सत किया सब सत तिस प्रभ ते सगली उत्पत
0: तिस भावे ता करे विस्तार तिस भावे ता एक अंकार
1: निक कला लखी न जाए जिस भावे तिस लय मिलाए
0: कवन निकट कवन कहिया दूर आपे आप भरपूर
1: अंतर गज जिस आप जनाए नानक ते जन आप बुझाए
0: सर भूत आवरतारा सर्ब नैन आपे खनहारा
1: सगल समग्री जाका तना अपन जस आप ही सुना
0: आवन जान खेल बनाया आज्ञाकारी कीनी माया
1: अब कह मद अल्प तो रह जो कुछ कहना सो आपे कह
0: आज्ञा आवे आज्ञा जाए नानक जा भावे ता लई समाए
1: इसते हुए सो नाही बुरा उरै कहो किनै कुछ करा
0: आप भला कर तू त्यात नीकी आपे जाना अपने जी की
1: आप साच धारी सब साच ओत पोत अपन संग राच
0: आकी गातमित कही न जाए दूसर होइता सो जी पाए

बंदों कर अनुराग श्री गुरु शब्द कमाई जिन जीते पंच विकार तीन संतन का वंदना सिर चरणन करतार एकंकार सतगुरु

उस परमात्मा ने इस पंज भूतक शरीर दे विच तेरी जिंद नूं टका दिता। कैसी खेड वरताई है मालिक, बाजे पवन आखे सब जाए। पवन कहिंदे ने स्वास, स्वासां रूपी पूंजी तेरे अंदर पा दित्ती। स्वास आ रहे ने जा रहे ने, आ रहे ने जा रहे ने, ते इस स्वासां रूपी माला दे विच वाहिगुरू नाम रूपी सिमरन नूं परोला है। जेकर नहीं परोएगा फिर तां महाराज जी ने कह दिता जीओ तपत है बारो। सारे शब्द दे विच गुरु नानक देव महाराज जी ने इस तपते हुए हिरदे नूं ठंडा किवें करना है जुगत समझाई। आखो सतनाम, तपते हुए हिरदे नूं तपत माहे ठाड वरताई, आनंद पया दुख नाठे पाई। जेता मोह प्रीत सुआद, सबा कालख दाग दाग। पातशाह कहिंदे ने दुनिया दे मोह दे विच, दुनिया दे रसां दे विच ग्रसिया होया है। एक दिन ऐसा समा आउना है परमात्मा दी सच्ची दरगाह दे विच जाना है। ये दुनिया दे मोह रसां ने तैनू नरकां दे विच सिटना ने।

0: करता आपे हुकम बजाए
1: सिमरन शास्त्र पण पाप विचार दे तत्ता सार न जानी
0: तत्ता सार न जानी गुरु पाजो तत्ता सार न जानी
1: एक नी संसार परम सत्ता सत्य रहन बहानी
0: गुरु कृपा दे से।

अकाल मूर्त अजूनी सैपांगर प्रसाद जप आदि सच जगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच।

प्यारे बच्चों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बच्चों, जो तुसी पार्क तो जाना है आ, तुसी सारे बच्चों को बेनती है, तुसी सारे जने अंदर आके दरबार हाल दे विच बैठना या चुप करके। अगर कोई भी बच्चा उपर कमरिया दे विच आ जा बाहर आ, जो आवाज़ आ रही है, तुसी अंदर आके चुप करके बैठना। Waheguru. I'm doing Simran, that means you're doing Simran. Waheguru. Waheguru. Waheguru. Waheguru. Bachcheo, ji tusi jana ya park te, tusi andar aa jao please. Sare bachcheyan nu benti hai vi tusi saryan ne andar aana. Waheguru. I'm doing Simran, that means you're doing Simran. Waheguru. Waheguru. Amritveer chup. Waheguru kariye. Waheguru. Waheguru. Waheguru. Waheguru. Waheguru. Waheguru. Waheguru. Volunteers nu beenti hai, ve sare bachcha nu please andar bhejo.